नहीं परियां मुस्कुराए, देखो वो गोरी गोरी राए, हमको इशारों से बुलाए।